0: इच्छा से बनता शेर और बातें बनती बकरी, शेर के आगे बकरी में मैं किसका ज्यादा नाम।
1: मस्त बने मदारी।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हाँ तो
0: मैं कुछ कह रहा था,
1: बोलो ना, भूल गए?
0: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।
2: उजाला रेडियो फॉर द अलरबेस्ट बॉलीवुड म्यूजिक। बेंट यू ook zo enthousiast? बेल दन विद द स्टूडियो 020-363-0808।
3: आरती मन मानती, कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं बांधती, बस्ता क्यों नहीं बांधती, बस्ता क्यों

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: सच भी पसंद नहीं, फिर क्यों ये दरवाजा बंद नहीं?
1: करू कौन जतन जल्दी हो मिलन, करू कौन जतन जल्दी हो मिलन, सुनते हो सजन छननन छननन छननन, छननन।

0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: अरे तक जरा तक,
1: जल्दी से बक, कहता है क्या वो दीवाने।
0: चोरी चोरी चोरिया,
1: जा जा जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा।

0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा।
1: होश करो तुम,
0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा। आशिकों की सुन,
1: छोड़ मेरी धुन, वैसे ही कर ले गुजारा।
0: आ आ आ चोरी, आ आ आ चोरी, आ आ आ चोरिया।
1: जा जा जा छोरा, जा जा जा छोरा, जा जा जा छोरा, जा।

0: मैंने कहा आ,
1: मैंने कहा जा,
0: मिलकर बना आ जा। मैंने कहा आ,
1: मैंने कहा जा,
0: मिलकर बना आ जा। मैंने कहा आ,
1: मैंने कहा ना,
0: मैंने सुना आ आ आ आ चोरी आ आ आ चोरी आ आ आ चोरिया।
1: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंद नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

राम करे कि ऐसा हो जाए कि मैं जागूं तू सो जाए, मेरी निंदिया तोहें लग जाए। मुकेश जी की आवाज़ और फिल्म मिलन का गीत अभी आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम में। अब हाँ सुन गाना।

बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। और गीत आप सुने तलत महमूद साहब की आवाज में, फिल्म कैप्टन की शोर का गीत उजाला रेडियो पर।

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio

आशा भोसले एंड शमशाद बेगम जी, फिल्म किस्मत से गीत आप सुने। एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मोहम्मद रफी साहब अब हिस्सा लेंगे।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। हार्लेम से लड़कन सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 74 साल के आयु में फिरन जीफन तक यार औत लड़कन गीता, कविता और अश्विन सरजू के पिता इफानो और संजय के ससुर काजल, चांदनी, अंजना, रागनी और जया के नाना, जेदी का परनाना, रूबेन का ननवा ससुर, अम्स्टर्डम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमिरका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मिका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले न्यू वेर खफोंदन वह का रहने वाला था। हार्लेम से लड़कन सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते बीफे को 74 साल के आयु में फिरन जीफन तक यार औत लड़कन गीता, कविता और अश्विन सरजू के पिता इफानो और संजय के ससुर काजल, चांदनी, अंजना, रागनी और जया के नाना, रूबेन का ननमा ससुर, जेदी का परनाना, अम्स्टर्डम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमेरिका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मिका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले न्यू वेर खफोंदन वह का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने की मौका है। आने वाले सोमवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक मांदखाफन फंसीफन तोत अख्तूर Uitvaart Centrum Westgaarde ke Moerdalei, ook meerweg 275 Amsterdam Oostdorp me. Arthi ke dagkriya, aane wale budh ke din me 2:30 baje, woensdag aanstaande 2:30 kiye jayenge. Westgaarde Crematorium, ook meerweg 275 Amsterdam Oostdorp me.

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में सुनिए अम्स्टर्डम से परिवार फन यूनन सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 74 साल के आयु में फिरन जीफन तक यार और सोनिया फन यूनन सरजू का भाई लियो फन यूनन का सार पत्रिशिया सबरीना और शांताल के मामू तीन दामाद के ममुआ ससुर पांच लड़कन के नाना अम्स्टर्डम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमेरिका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है मिका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे सूरीनाम में पहले न्यूवेर खफोंदन वह का रहने वाला था अम्स्टर्डम से परिवार फन यूनन सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 74 साल के आयु में फिरन जीफन तक यार और सोनिया फन यूनन सरजू का भाई लियो फन यूनन का सार पत्रिशिया सबरीना और शांताल के मामू तीन दामाद के ममुआ ससुर पांच लड़कन के नाना अम्स्टर्डम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमेरिका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है मिका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे आने वाले सोमवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एटफर्ड सेंट्रम वेस्ट खार्ड के मुर्दालय ओकमेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 2:30 बजे वोंसदख आंस्टांड हल्फ द्री किए जाएंगे वेस्ट खार्ड क्रिमेटोरियम ओकमेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में।

और मृत्यु समाचार को सुनिए। अम्स्टर्डम ज़ुइटोस से परिवार सरजो भत्तू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 74 साल की आयु में फिरंसी फंतखियार औत भौजी विधवा कृष्णा सरजू भत्तू का देवर स्वर्गीय श्री सुखराम सरजू का भाई संता नीता सुरेश संद्रा सरिता और स्वर्गीय रजेश के काका जोरीना और बाकी दामाद पतो के ककवा ससुर लड़कन के आजा अम्स्टर्डम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमेरिका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मीका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले न्यूवेर खफोंदन वह का रहने वाला था। अम्स्टर्डम ज़ुइटोस से परिवार सरजू भत्तू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 74 साल की आयु में फिरंजार औत भौजी विधवा कृष्ण सरजू भत्तू का देवर स्वर्गीय श्री सुखराम सरजू का भाई संता नीता सुरेश संद्रा सरिता और स्वर्गीय राजेश के काका जूरीना का ककवा ससुर लड़कन के आजा अम्स्टर्डम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमेरिका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मीका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले सोमवार की रात में 7 बजे से 8 बजे तक मांदहाफन फंजी फन तो ताख्तूर उत्फर सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मिरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 2:30 बजे वूंस दखास्तान हालफ द्री किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रिमेटोरियम ओक मिरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर इतफार्त फुरजोरखिंग समस्त परिवार सरजू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

मुकेश जी और आशा भोसले से। फिल्म का नाम मोहब्बत इसको कहते हैं और एक बार फिर आशा जी हिस्सा ले रही है प्रोग्राम में, इस बार शमशाद बेगम के साथ।

कजरा मोहब्बत वाला फिल्म किस्मत का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा आप देखें वेबसाइट पर ujala.nl। और सुनने वालों एक और पुराना गीत अश्नी माता दिन की आवाज में है।

या इतना बड़ा शराबी तू मेरे आंसू पीता है. गाना का नाम है काली बोतल एंड दैट वाज़ द सिम्फन परंपरा तंडन. यू वांटेड हियर बाय उजाला एंड इट इज द सिम्फन सचे तंडन ओक समेत परंपरा तंडन. और गाना का नाम है तुम ही है अपना.

0: अन ब्रांड न्यू हिट सिंगल देश न्यू फिल्म जिसका नाम है हाय जवानी तो इश्क होना है तेरा हो जाऊं स्टेबिन बेंस न्यूज समेत योनिता गांधी इन द लीड वोकल्स दैट इज द हिट सोन हॉय फॉर न्यू म्यूजिक नाउ दिस इज बियॉन्ड हिल हुड एंड दैट न्यू एंट्री देख एथर इन स्कीट इज एन ट्रंगा फेटे न्यू हिट सॉन्ग एन न्यू साउंड ट्रैक फॉर हिमेश हिमेश रेशमिया एंड मनोशी चिल्लर An pop song, a pop album, and the soundtrack heet Sharab. Dus kieten we nu de eter in de brand new soundtrack van Himesh, Reshamiya.
1: What's hot and what's not, de nieuwe promo songs, trendy music, hot Latin movers en Punjabi pops. Je hoort ze hier op Holland's hottest hit radio,
2: Ujala Radio.
1: Ujala Radio.
3: Nieuw hier, een nieuwe promo song uit Ujala's Factory.
4: Nieuw.

कैसे लगा आपको, दिल और दिमाग को कहीं और ले जाते हैं ऐसे मौसम में। बहुत अच्छा गाना हमने आपको सुनाया भाई कुमार सानू, हम सबका सानू कुमार सानू, फिल्म गुदगुदी का गाना हमने आपको सुनाया।

एक गाना है जो लोग ज्यादा इस वक्त पसंद करते हैं, पिक्स अप अ लॉट, एंड ik heb het over dat prachtig lied uit de film Bhoot Bangla. Je hoort Tuhi Dista.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। हार्लेम से लड़कन सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 74 साल के आयु में फिरन जीवन तक यार औत लड़कन गीता कविता और अश्विन सरजू के पिता इफानो और संजय के ससुर काजल चांदनी अंजना रागनी और जया के नाना जेदी का परनाना रूबेन का ननवा ससुर अम्स्टर्डम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमिरका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मिका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले न्यू वेर खफोंदन वह का रहने वाला था। हार्लेम से लड़कन सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते बीफे को 74 साल के आयु में फिरन जीवन तक यार औत लड़कन गीता कविता और अश्विन सरजू के पिता इफानो और संजय के ससुर काजल चांदनी अंजना रागनी और जया के नाना रूबेन का ननवा ससुर जेदी का परनाना अम्स्टर्डम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमेरिका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मिका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले न्यू वेर खफोंदन वह का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आने वाले सोमवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक मांदखाफन फंसीफन तो अख्तूर Uitvaart Centrum Westgaarde ke Moerdalei, ook meerweg 275 Amsterdam Oostdorp me. Arthie ke dagkria, aane wale budh ke din me 2:30 baje, woensdag aanstaande 2:30 kie jaenge. Westgaarde Crematorium, ook meerweg 275 Amsterdam Oostdorp me. सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर उत्फार्थ फुरजोरखिंग समस्त परिवार सरजू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए एंस्कदे से परिवार फागु और परिवार साम नारायण बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 50 साल के आयु में फेफ्तख यार और माँ लीला फागु और पिता प्रसाद साम नारायण के बेटा नाना श्रीमान साधु फागु और नानी श्रीमती मीना ब्रामदीन के नाती तीन बहनों सुनीता शिरली और कविता के भाई एंस्कदेई बॉकहॉर्स लंदन का रहने वाला देनिस साम नारायण की मृत्यु एंस्कदेई में हो गई है। एंस्कदेई से परिवार फागु और परिवार साम नारायण बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध को 50 साल की आयु में फेफ्तखियार औत माँ श्रीमती लीला फागु और पिता श्रीमान प्रसाद साम नारायण के बेटा नाना श्रीमान साधु फागु और नानी श्रीमती मीना रामदीन के नाती तीन बहनों सुनीता शिरली और कविता के भाई एंस्कदे बॉकहॉर्स लंदन का रहने वाला श्रीमान देनिस साम नारायण के मृत्यु एंस्कदे में हो गई है। देनिस के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आने वाले सोमवार के शाम में 5 बजे से 5:30 बजे तक एटफर्ड सेंट्रम फ्रीडहॉफ के मुर्दालय वेथाउदर बी फर्स्ट्रात 104 104 एंस्कदे में अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:15 बजे दिन्स दखानस्तांद क्वर्तोफर्त्वी किए जाएंगे क्रीमाटोरियम एंस्कदे ओला द लेस्टर में और पता है उसल रीतवेख 40 उसल रीतवेख 40 एंस्कदे में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-1452-51-56 06-1452-51-56। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो इन सभी परिवारों के दुख में शामिल है।

साथ बजकर 17 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये है उजाला रेडियो और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज शनिवार है 9 तारीख, मैं मेरे प्यारे सुनने वालों और वो भी साल 2020, बहुत ही खूबसूरत शनिवार है आज जो बीते हैं और अभी रात बाकी है जो मेरा और आपका साथ रहेंगे रात्रि में 12 बजे तक। अभी कड़ी धूप है बाहर मेरे प्यारे सुनने वालों, सूरज अपना चेहरा दिखा रहे हैं बाहर, मैं देखता हूं स्टूडियो के तो सभी मगन में है, खुश है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर भी हैं, जिस हाल में आप होंगे, बेहद खुशी होंगे और किसी प्रकार का दुख है मेरे प्यारे सुनने वालों तो बस ऊपर वाला का नाम। मेरे प्यारे सुनने वालों बेहद खुशी है हम आज फिर मौका जो मिला है आपका सेवा करने का। बहुत सारे गाने रिलीज हुए हैं सैटरडे नाइट फीवर का, ये लोकल का प्रोग्राम है, आप तक हम पेश करेंगे निकाल कर एक से एक नए गाने जो रिलीज हुए हैं लोकल सॉन्ग्स, और अगर मौका मिला तो कुछ पुराने भी उसमें हम जोड़ देंगे, सेवा में पेश करेंगे। मेरे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको तो मालूम है जो लोग सुनते हैं एपर्स के नाम से, रात्रि में 8 बजे से हम गीत चलाने शुरू करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से मैं एक लोकल चलाऊं, डन माखी न्यू अलखान अपना 020-363-0000, 020-363-0000, vergeet je naam niet om te vermelden। या मेरे प्यारे सुनने वाले, अभी तो मृत्यु समाचार आप सभी ने सुने, लेकिन ब्रेक से पहले उस पार भैया कोलेगा सतीश रामदास मिश्री जी के जरिए आप सभी ने सुने हैं हिट सॉन्ग। हमेशा की तरह हर एक शनिवार फिर तो सेफ आप मजा ले सकते हैं उनके प्रोग्राम के साथ, एंड ऑल द हिट दी पोटेंसी हैव ओम या टॉप टूर वो आपको सुनाते हैं, और उनके साथ साथ भी हमेशा कुछ ना कुछ पुराने हीरे जो होते हैं सेवा में पेश करते हैं। तो भैया जी सतीश रामदत्त मिसीर जी को हम कहेंगे थैंक्यू वेल, मजा आया और आप अपना वीकेंड को एंजॉय करें। भैया को आप बहुत ही जल्दी फिर आप सुनेंगे रेडियो पर ईरान युवार। मेरे प्यारे सुनो, आपके कामों काज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते, जैसे कि आपके फरमाइश है जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहोगे, तन सोमवार से, हाँ जी सोमवार से आप दफ्तर को तार कर सकते हैं सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक, और वो भी सोमवार से शनिवार 020-409-0807 या तो 24 घंटे 7 दिन लगातार मिल के जरिए आप अपना कामकाज दिवा सकते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। नीट नट स्टूडियो एप फोर कंटोर से आकर मेल नार info@ujala.nl ऑफ अंडर्स बेल दफ्तर के वक्त दफ्तर के तार पर 020-409-0807। और उजाला रेडियो तमाम सोशल्स पर मौजूद है मेरे प्यारे सुनने वालों, इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक और यूट्यूब पर गेट कनेक्टेड विद उजाला रेडियो, तरह तरह की सूचनाएं जो हम छापते हैं वहां आसानी से आप पढ़ पाओगे, किसी को टैग कर पाओगे, अपना कमेंट्स दे सकोगे, ये कहना दिल क्या क्या नहीं कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर आप अबोने लेंगे तो उजाला रेडियो के जो हीरे हैं फंड कौन से हर्ट फंड उजाला रेडियो जो वहां पर अपलोड होते हैं जाना कहें उपलब्ध। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके व्हाट्सएप का इंतजार में हूं, जैसे व्हाट्सएप आएंगे उसी हिसाब के साथ भी हम गीत चलाएंगे। इंडी फॉलो हॉर्ड फन बिन कोम फन एपियस 020-363-0000
020-363-0000. लेकिन ये आप भी जान लीजिएगा कि इन टिटल्स दोहराइएगा, तू लोगों के ना चाहिए टिटल्स बोले कि हमें कि हम मांगला ई गनवा सुने, मांगला ऊ गनवा सुने, मांगला ई संगरवा सुने, ऊ संगरवा सुने, नहीं, वो हमारा काम है, हम तू लोगों के फराज कर, तू जाने दो। या तू बोल सके हमसे कि तू मांगे एगो रुस्तह गाना, कि तू मांगे सोल, हाँ दैट मैच वेल। फिलहाल तो प्रोग्राम में हम आज का ओपनिंग सिलेक्शन कुछ बाना बेकी मिक्स मैं सुनाता हूँ आपको। शुभ रात्रि, एंजॉय योर वीकेंड मेरे प्यारे सुनने वालों।

0: Roberto, mere pjerë se në alo Roberto, fanë të në malëk formaci Face to face Roç, roç, tu hëmë dik Dik ke kërëhe si ki Ek din tu ese urgeje jese bana biki Aaj ka opening selection mere pjerë suni alo Aur mai dekhta hun ghari ki taraf Dan khawa naar 6 minute Over half aag nu व्हाट्सएपर्स के नाम 8 बजे के बाद नेचुरली हम गीत चलाएंगे और इस एक गीत के अंदर में कुछ लोगों ने ये कश उठाए हैं ऐप करने के लिए एक वही तथ्य इस मूवी वेयर फिल्म मैन से साइन हो बैठे थे घूमो मगन में रहो खनित फनत मोए वेयर लेकिन अगर आप घर पर हैं आप चुन किए हुए हैं तो तहरील से स्वागत करता हूँ मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे इस सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं लाइव एंड आरएक्यूआर के स्टूडियो रोटरडम से जो हमेशा ये प्रोग्राम 5 घंटे लगातार आपकी सेवा में हम पेश करते हैं इन दंग से व्हाट असिस्टेंस समय लोगों ने स्क्रीन किया है एंड वी हैव अवेयर हील फिल्म नंबर्स जो रिलीज हुए हैं आज कल पिछले हफ्ते Nou ja, in ieder geval de afgelopen dagen, weken, maanden. To koshish karunga zyada se zyada naye chalane ke liye, lekin idhar udhar ho sakta hai. Dat ik een mooie gouden ouwe erin gooi. 020-363-0808. Jahan par aapko app karna hai. Je hoeft niet langer meer retori met me te praten, bhaiya. Bas tu, hi, hello, boliye. आपका शुभ नाम क्या है या इट्स ऑल फाइन टू वेट कि आप कहां से ऐप कर रहे हैं लुइस्टर ये हियर एर्गेंस इन नीदरलैंड और बे इन द बुटलैंड ऑन लुइस्टर तो हमें भी ये जानकर खुशी है कि कहां-कहां लोग ट्यून किए हुए हैं है ना जो लोग काम पर है मेरे प्यारे सुनो वालों दिल लगाकर काम करना और अगर आप सड़क पर हैं किसी भी प्रकार से आप हिस्सा ले रहे हैं तो संभाल के जो लोग विदेश से आए हमारे देश में तो वेलकम एंजॉय हॉलैंड और अगर हमारे इस देश से आप गए विदेश तो आपका छुट्टी के दिनों जो है आप भरपूर एंजॉय करें और आप जहां भी जाएंगे अपना रेडियो आप साथ ले जा सकते हैं तू जाने तो
1: Vamos a demostrar cómo se hace.

बहुत स्पांग रे डीजे फेनोन, दिल तोते तोते हो गया। सैटरडे नाइट फीवर है मेरे प्यारे सुनने वालों। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर भी हैं आज इस शनिवार की रात्रि को, हफ्ते भर आपने काम किए हैं बहुत सारे, द मिस्ट मैन सेंट फ्राई, ज्यादा से ज्यादा लोग छुट्टी से हैं, आज सौदा पानी किए होंगे, कुछ चटक मटक बनाए होंगे, कुछ या तर्क शायद पियत होंगे, आई डोंट नो। यहां स्टूडियो में भी गेसेलिग है, मैं डॉक्टर सैनर दुस्ताने से तालते गेसेलिग, और अभी कुछ लोग और आएंगे, देखते हैं आज खाने के लिए क्या लाता है। एक है वेल ट्रैक इन एन चीनीज वनाग, नीट दी चीनीज सेल्फ, मार नासी या लिफर नासी मैट, कुछ का नाम है क्या बोल रहे हैं मान पीकिंग या सॉरी पीकिंग इंट, देखते हैं क्या लाते हैं। फाग दूं से तो नीत वतिक विल, बहुत आई भी लोग के साथ हम घूमिला, आई भी आई पन इस सब के ना छूटे हैं। मेरे प्यारे से 020-363-0808 जहां पर आपको ऐप करना है, और अगर आप चाहते कि आपके नाम से एक लोकल चलाऊं, और सुनीत खाते पर तो लोकल चलाएंगे लेकिन किसी के नाम से नहीं, और नतुलक हैपिक लातर क्योंकि कल मातृ दिवस है, मदर डे है, तो कुछ मदर डे वाला गीत भी हम लेकर होता है भी लोग के साथ हम घूमिला, आई बी आई पन इस सब के ना छूटे हैं। मेरे प्यारे से 020-363-0808 जहां पर आपको ऐप करना है, और अगर आप चाहते कि आपके नाम से एक लोकल चलाऊं, और सुनीत खाते पर तो लोकल चलाएंगे लेकिन किसी के

एक दो मात्र दिवस का सुपावसे पर कुछ गाने भी हम पेश करेंगे। यू फिनी तो फरमाइश बरमाई दिखाई को यू ही हम चला देंगे। Dus 020-363-0808 per. En ja, ja, eentje zegt van ik ben aan het eten en ik luister. Dus waar is bhojan ho? Bataye nahi ki aap kya kha rahe hain. Chalo geet sunte hain. Aap mazaa le, bharpoor.

या ब्यूटीफुल सुंदर पोपो और कंचन का मिक्स। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनो, हेलो फरमासी गुड वाइब्स आप सुन रहे हैं। अभी ब्रेक होंगे 8 बजे का मेरे प्यारे सुनने वालों, और उसके बाद एपर्स के नाम से गीत हम चलाएंगे। आप ही ऐप करना चाहेंगे, आप ही चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं। 0 3 3 6 3 9 8 9 8।

अरे ओहो क्वाइकी और प्रेम मेरे प्यारे सुनने वालों, द फार्मेसी गुड वाइब्स या मेंस वीकेंड है तो इस तरह के नगमे बहुत ही सूट करता है। किसी ने कहा कि शुभ रात्रि आप कह रहे हैं, लेकिन अभी तो कड़ी धूप है, बाहर सूरज अपना चेहरा दिखा रहे हैं। या मया दिस वेल ऑफन कोई खा रहा है दाल भात और चोखा इस उगले करोड़, खाली बताइए ना कि कौन चोखा खा है, हर तरह की चोखा होता है। और कुछ लोग हैं जो खा रहे हैं एकदम या एक एथिन फिश मार अत्मा ह्यूली स्मार्क। एक आखिरी गीत मेरे प्यारे सुन वालों, इस आखिरी गीत के बाद हम बढ़ चलेंगे ब्रेक की ओर, और ब्रेक के उस पार सभी एपर्स के नाम हम गीत चलाएंगे। To stay tuned, enjoy you are, enjoy Saturday Night Fever here on you are.

आओ हम तुम ले ले मजा, शेखर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। और क्यों ना मजा हम ले, वीकेंड है, शनिवार है, 9 तारीख मई है और ज्यादा से ज्यादा लोग छुट्टी से हैं। लेकिन यकीन मानिए जो लोग इस वक्त काम पर हैं, टैक्सी चलाते हैं या एयरपोर्ट पर काम करते हैं या चिकन हाउस में काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, जहाँ पर छुट्टी वीकेंड में नहीं होते, सच्ची ओर जैसे खनी तो फन यू आर तो आलस इस मोख लगती है वोटे भैया, लेकिन ध्यान काम पर होना चाहिए। मेरे प्यारे सुनने वालों, कुछ लोग हैं जो ऐप किए हैं, ये कष्ट उठाए हैं ऐप करने के लिए, उन सभी के नाम से यहां से हम गीत चलाना शुरू करेंगे। आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से गीत चलाऊं, तो आपको ये मालूम रहे कि आपके गीत अगर आप अब से ऐप करेंगे दाने से पास ना द क्लॉक फॉर नहीं खुर, ठीक है, 020-363-0808 उजाला रेडियो का जो व्हाट्सएप का नंबर है, आप ऐप करेंगे सीधे यहां स्टूडियो में आपका मैसेज आएंगे। सबसे पहले मैं देख रहा हूं और जो इस वक्त बहुत ही लेकर ईद खा रहे हैं अपने शहर में, इंद्रू जी और चित्रा जी, वेल आपके ऐप के लिए आप भरपूर एंजॉय करें अपना वीकेंड, अपना भोजन। और एक गीत हमने तैयार करके रखा है आप दोनों के लिए, हेर इंद्रू जी के लिए और चित्रा जी के लिए, अटमार सबरुक। उम्मीद और आशा करते हैं आप दोनों पसंद करेंगे।

तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। गीत फिर से गाया गया है, सजाया गया है और आप तक बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया गया है। Remember, this is UR, आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन लाइफ एंड आर आई UR के स्टूडियो रतनाम से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर विद ब्यूटीफुल लोकल्स। और इस वक्त सुन रहे हैं स्वागरी टांटा आनी लोंडा के नाच। Deze man heeft het altijd heel erg druk. Dus zwaak groetjes namens de hele crew. Natuurlijk van UR. Or, aap jo bhi aaj karenge. Heel veel succes. Or, aapke app ke liye swagri tanta ani londa ke naach. Dankjewel. The Lion of Baithak. Geet gaenge aur aapke naam karta hoon.

अरे बाप रे दादा, एकदम खैर में मेरे प्यारे से नवालो। द लायन ऑफ बैठक गाना रविंद्र सिंह सेवनाथ। ना जा मोरे राजा जिया तरसाए, सेम में जो पेश किया गया है। और अगले गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। और ये गीत हाल ही के नए एल्बम फन द टेम्पटेशंस, विनोद राठौर और विशिक्या ये दोनों मिलकर गीत गाएंगे। और इसे हम नाम करेंगे मेरे प्यारे सिनेमा अमस्टल फेम में जो रहती है, प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं, मफराओ सुशीला चंद्रिका सिंह जी। तो सुशीला चंद्रिका सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेल, चून करने का, ऐप करने का। और उम्मीद और आशा करते हैं कि ये गीत आप पसंद करेंगे।

विनोद राठौर और विशाखा की आवाजें, तुमको भी तो ऐसा ही कुछ होता होगा ओ सजना। ब्यूटीफुल सॉन्ग किशोर कुमार और लता जी का, दोनों ने मिलकर गाए हैं। आप तक हमने पेश किया है बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ ये रोनिवास, और वो भी सैटरडे नाइट फीवर में। आप भी चाहते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों कि आपके नाम से गीत मैं चलाऊं, dan mag je nog altijd appen naar 020-363-0808. 020-363-0808.

हम रोटरडम शहर का जो है एक भैया जो हमेशा चून किए करते हैं, जॉनी कालीचरण जी। भैया जॉनी कालीचरण जी, दंकीवेल आपके ऐप के लिए और हमेशा चून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दंकीवेल यही से हिवेलन चलता नगमा, तो जहां तक मेरा ख्याल है ये चलता नगमा है, तो मैं आपके नाम करता हूं द देबा क्रू, और गीत गाने वाले हैं अमरीश और रवीन। थैंक यू।

या जन्म जन्म का साथ है, अमरीश और नवीन की आवाज, सॉरी रवीन की आवाज, द डिबा क्रू। 11 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सिनवालों, सरे 8:11 ओवर द क्लॉक, फन हालफ नहीं हो चला है। और अब की बार गीत हम पेश करने वाले हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड कन्नड़ में, सागर मलिक, जो मेरा छोटा भाई भी है। तो इनके मुखाने गीत हम पेश करेंगे और नाम करेंगे जो हमारे प्रोग्राम भी से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं, जो खुद भी गाते हैं, फारसिया अलाइज मोहम्मद खान जी। तो थैंक यू वेल फारसिया फॉर द स्टेम एंड फॉर ये एपिया। ये गीत सागर मलिक का गाया हुआ, फारसिया जी आपके नाम।

सीने में दिल है और दिल में धड़कन, और धड़कन में तेरा एहसास है। फ्रॉम द एल्बम सनम और चाहत वसत नौ यहां मांगनी है विनोद सॉरी अतवासवान दीवान उदित नारायण या उदित नारायण का एल्बम है और वो गीत वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड के अंडर में सागर मलिक जी की आवाज में हमने आप तक पेश किया है।

मेरे प्यारे सुनो प्रोग्राम एकदम लाइव एंड डायरेक्ट आप तक पेश हो रहे हैं। जिस इधर उधर कुछ गलती हो जाए तो माफी चाहता हूं। ब्रेक से पहले और एक गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगा और ये गीत जेरी खयाम जी गाएंगे और जेरी खयाम जी का गाया हुआ गीत हम नाम करेंगे डनाह का मिक डंकीवेल फॉर ये एपियर। खूबसूरत गीत आपके नाम करता हूं। खनीत फाइन वीकेंड, एंजॉय यू आर।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, एकदम फेयर सन अफेयर्स है ये गीत। सागर मालिक जी की आवाज, प्रख्ता पखलाई दौर माइस्ट्रो ज्वाला, और ये था नुसरत फतेह अली खान का एक खूबसूरत मेशअप जो हमने आप तक पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों। एटलीस्ट 3 मिनट ओवर द क्लॉक फन 9:10 गुजर चुके हैं। ये है आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो। सैटरडे नाइट जी पर आप सुन रहे हैं विद ब्यूटीफुल लोकल्स, और एपर्स के लिए गीत हम चला रहे थे पिछले घंटे में एनवर खान में फेरदर। आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं? 020-3-9-9-9 जहां पर आपको ऐप करना है, हाई हेलो कहना है, आपका शुभ नाम और आप कहाँ से ऐप कर रहे हैं, en ja, je mag ook aangeven of je een rustige of een snelle nummer wil. Tik, hè? Dus 020-363-0808. Hamare priye collega Paras Moliji bhi program se jore hue hai. Aur unke saath jitne bhi log bhi hai, ek shubh weekend hum kehte hai aap sabhi ko. Aap bharpoor enjoy kare apna weekend. उजाला रेडियो और खास करके ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर, पारस मुरली मामा जी, ये गीत आपके नाम और जितने लोग भी आपके साथ हैं उन सभी के लिए।

जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ओ मेरी जाने जान, तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए ही जान मैं दे दूं। गलेजंत नदीम खान जी की आवाज में गीता तक हमने पेश किया है हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में। और बाहर यहां स्टूडियो का धीरे धीरे धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है, लेकिन जहां पर उजाला सुनाई देते हैं वहां उजाला ही उजाला तू जाने दो। रतनाम शहर से भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं राकेश और नताशा। तो राकेश और नताशा को हम कहेंगे धन्यवाद, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। और एक बम्बल गाना है सुचिल अमराव और मार्शियानो मार्कस की आवाजें। तो फरमाइश

0: खसेलख।
1: हाँ जी खसेलख है और बम्बल गाना पेश हुआ है प्रोग्राम में एंड इट वाज नेचुरलक सुजल उमराव और मार्शियानो मार्कस द फॉर्मेशन स्टूडिया। मेरे प्यारे सुनने वालों 020-363-0808 जहां पर आपको ऐप करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से भी मैं एक गीत चलाऊं तो तुलो हम में वहां ऐप करिए और बताइए कि आपका नाम भी क्या है और तुलों कहां से ऐप करे हैं कि हम भी जाने कि तुलों कहां कहां सुने हैं उजाला रेडियो। जैसे हमारे स्वागरी देख वो सुतमेर में रहे हैं बाकी हमारे स्वागरी के इतना मोई ओतो है वो सगरों घूमे हैं और स्वागरी बोले बेल्खी में है और बेल्खी में भी सुने हैं उजाला रेडियो। देख ले तो जब तू मोई से चिजवा रेखल करिए तो तू कहां कहां ना सुन सके सुइसो फिया www.ujala.nl दुनिया भर में आप सुन सकते हैं एंड डिफर्स एपीएस वारोंदर उजाला रेडियो एप उसे भी आप अगर डाउनलोड करें फ्री है तो उजाला रेडियो को आप सुन सकोगे पूरे संसार में। और रहे नीदरलैंड के बाद तो डीएबी प्लस पर हिल नीदरलैंड आप उजाला रेडियो को सुन सकते हो। मेरे प्यारे से स्वागरी हंस जो सुतमेर में रहते हैं और इस वक्त बेल्जियम में है उनके नाम से गीत मैं चलाऊंगा। यहाँ किशोर कुमार का एक मैशअप है एकदम फेयर्स ऑन द पेयर्स किरण केदार एंड स्वाग एंजॉय बेल्जियम एंड वेलकम टू रहे

याकीरन किरार मेरे प्यारे सुन वालों, और वैसे तो लिखा है किशोर कुमार मैशअप मारा किशोर कुमार सोएब हसन देंगे कफाउचा। ठीक सरे नौ का वक्त है मेरे प्यारे सुन वालों, प्रसिद्ध हालफ तीन स्टूडियो तय और एपर्स के लिए सैटरडे नाइट फीवर में जो पेश हो रहे हैं एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से, हम लोकल नगमाएं पेश कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं, एक है नोक रूम तक वंदर सही नहीं सोफेल एपर्स फनाव, तो अगर आप चाहते हैं तो आप के नाम से भी गीत मैं चला सकता हूँ 020-363-0008। प्रभा जी अमस्टरडम सेंट्रम फनोइड होस्टाद और होस्टाद का जो सेंट्रम है वहां से प्रभा जी के ऐप आए हैं, तो एंजॉय योर वीकेंड। धन्यवाद आपके ऐप के लिए प्रभा जी। एक खूबसूरत गीत शेखर कुमार का गाया हुआ मैं आपके नाम करता हूं।

इतना है तुमसे प्यार मुझे ओ मेरी राजदार। ये था साउथ खान और विशाखा। अपनी खूबसूरत आवाजों में दोनों ने मिलकर फिर से गीत गाए हैं, सजाए हैं और बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ से हमें आप तक हमने पेश किया है। रिमेंबर दिस इज यू आर। हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते www.puntujala.net। हिरवाल्डो और मार्कृत जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड। और अभी बारिश के बातें हो रहे थे कि हमें बारिश की बहुत जरूरत है। नीतेल का दखाली मार सोन सोन सोन वह है बोक रेख नोड। तो ऐसा क्यों हम ना कर जाए कि रात को बारिश हो वनेर वसलाप और दिन के जब हम जगे दंस खेंद सोन वो इदियाल सौदत सैन। हेर ऑल दो और मरखरी जी अच्छा दंक यूली वेल फॉर यूली अपिय एंड नॉट ऑलवेज चून करने के लिए यू आर पर संगर है जो बहुत अच्छा गाता है फारसी आलाइस मोहम्मद खान जी। इनकी आवाज में गीत आप तक मैं पेश करूंगा एंड एंजॉय योर वीकेंड।

Ja, Rihanna, de king of indie pop, om er wagen te zijn, hoor, Gilio. De formatie Umaran Squad. मेरे प्यारे सुनने वालों अभी ब्रेक होंगे और वो भी 10 बजे के बाद तो थालफ एलफ कुछ माँ के नगमाएं हम पेश करेंगे आप सभी के लिए ईदर इन दिलासत आप सभी के लिए और वो भी अमदात मोरख मुडर डाखिस और जितने लोग कल मनाएंगे उन सभी के लिए बहुत सारे लोगों को तो माँ नहीं है लेकिन फिर भी उनको याद करते हैं तो उनकी खूबसूरत यादें जो हैं आप हमेशा उनको याद किए करिए और आप सभी के लिए गीत हम चलाएंगे अनहाल ऑफ योर लंग ठीक है मिलते हैं ब्रेक के उस पार

गुण है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। मेरे प्यारे सुनो, ये उजाला रेडियो है और 12 मिनट गुजर चुके हैं 10 बजकर, और जैसे मैंने कहा पिछले घंटे में सरे 10 बजे तक कुछ माँ के नगमाए। और ये फैशन जो अभी आप सभी ने सुना है, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, उसका एक दूसरा फैशन अभी आपको हम सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल तो एक और गीत पेश करेंगे किरण रामदीन जी की आवाज में, और आप सभी को हम यही कहेंगे कि एक शुभ मातृ दिवस कल मेरे और उजाला रेडियो के पूरी टीम की ओर से।

किरण राम दिन मेरे प्यारे जिले वालों, और सभी के माँ प्यारे हैं। और सही कहा इन्होंने, अगर जिंदा है आपकी माँ तो उन्हें बेशुमार प्यार आप दे। ऐसा ना हो कि कल वो ना रहे और आप

जहाँ तक मेरी ख्याल है इस जमीन पर हमने तो भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हमारे लिए माता पिता भगवान का रूप है। शुभ मातृ दिवस फैन मुडोडख, और वादे के मुताबिक जो गीत हमने चलाए थे, कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती? सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। एक फिर से ना आपको सुनाएंगे शेखर कुमार की आवाज़।

कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। ये जो दुनिया है ये पक है कांटे का, तू फुलवारी है ओ माँ। अपना नहीं कोई सुख दुख तुमको, या खासू फेडर माँ के कुछ नगमाएं आप तक हमने पेश किया है हमारी ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर में, मेरे प्यारे सुनने वालों। और कारण ये कि कल मातृ दिवस है, मुडरदाख है, तो आप सभी के लिए गीत पेश हमने किए हैं। और यहाँ से मैं और उजाला रेडियो के पूरी टीम की ओर से एक शुभ मातृ दिवस फैन मुडरदाख मोड़ा खनी तरफान लाद मुडर्स ओ खनी एक्सरा Maar als het kan, doe het 365 dagen. Maar jab tak hai, jee bhar ke maa ko pyaar kar. We gaan terug naar de lijst met Appers. Aur ab ki baar geet jo hum chalayenge, wo hai टेक्सस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टेक्सस में जो रहते हैं और हमेशा सुनते रहते हैं, पावर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सुनीता जी और अजय जी दार इन टेक्सस, नॉकमास धन्यवाद। हर हफ्ते हम कहते हैं आप सभी से प्रतीक सोबलाय आलते बेन चुली एपिया। आप सभी के प्रेम और प्यार के साथ मेरा ये जोश बढ़ते हैं और आपके प्यार के लिए हम यहाँ दौड़ के आते हैं प्रोग्राम बनाने। तो आप साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। सुनीता और अजय जी टेक्सस यूएसए डंक यू लिवेल। एक गीत हमने तैयार करके रखा है फोकस में, इज दैट वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड के अंडर में सागर मलिक विद दिस सॉन्ग फॉर यू ऑल देयर।

दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, हाँ तुमसे प्यार करके। सागर मालिक की आवाज और ये गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, अभी हम फिर एक बार पेश करेंगे अन आंध्र फेरसी। पिछले हफ्ते हमने पेश किया है और काफी लोगों ने पसंद भी की है, तो वो फैशन मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं पेश करूंगा अभी कुछ नगमाएं के बाद। ये उजाला रेडियो है और 6 मिनट गुजर चुके हैं सरे 10 बजकर। Het is zaterdagavond, de avond is nog helemaal jong. En het is bahut gezellig hier. Alhoewel, ik heb het wel een beetje fris nu. Ik ga wat. Ja, studio Mira, jo hè, Rotterdam ka. Ja, AG. Happy Fensters. और पीछे कंवारी है, और कंवारी के और पीछे एक और कंवारी है, और अगर सब खुला है या ना खाता तोख्त। और कुछ लोग कश मारते हैं या एक बैसल अफ़ेन रो कर एन इधर ही मुद्दों आती विल मार गलोव नहीं दत्त हेल माल गजोंत इस। Maar mensen moeten vooral doen wat ze willen. Ham kon een kebab maken. Samjani keli. Maar het is geen goede ding dat roken. Nee. We gaan naar Lisse. Lisse, mire piari sinualo. Sarda ke app aan. और सारदा को हम कहेंगे थैंक यू वेल एप करने के लिए। खनित फन वीकेंड, खनित फन यू आर, खनित फन सैटरडे नाइट फीवर एन खनित फन डेज नंबर। ये शाम मस्तानी मदान।

ब्यूटीफुल मेरे प्यारे जन वालों, ये शाम मस्तानी हमने आप तक पेश किया है हीरो निवार। अगले गीत मेरे प्यारे सुन वालों हम पेश करेंगे सेंट मार्टिन द कैरिबियन में जो रहते हैं पूनम जी। पूनम जी के नाम एक नगमा पेश करेंगे। धन्यवाद पूनम आपके ऐप के लिए। देश से सुरियाओं

तुझमे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। ब्यूटीफुल सॉन्ग हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तू जाने तो। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ वक्त जो है निकला जा रहा है और हम बढ़ रहे हैं 11 बजे के ब्रेक के ओर, वहां तक हम जा रहे हैं 020-363-0808। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से मैं एक खूबसूरत गीत चलाऊं, लेकिन आपको मालूम रहे कि अगले घंटे में या ना खाऊं वेल सो फील ऑल्स मोखलक सोल नंबर सराया। सूरीनाम की ओर हम बढ़ चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और सागर मलिक का गाया हुआ एक गीत हमने पेश किया था, लेकिन एक अपन मोयर फेरसी ही या मोयर फेरसी नोखन फेरसी मुझे कहे नीत मोयर मां नोखन फेरसी जो हम आप तक पेश करना चाहेंगे। ये गीत हमने पिछले हफ्ते पेश किया था एन एक बेखा बोमबार्डियर तोर हिलफिल लॉयसरार्स, और सभी ने पसंद किए हैं, तो पता नहीं क्या जादू है इस गीत में। मैं ये गीत फिर चलाऊंगा, लेकिन आज मैं नाम करूंगा अनीता जी के लिए, अनीता जी आइट सूरीनाम जो भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं तो धन्यवाद जोड़ने के लिए। ये गीत आपके नाम करता हूं।

लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, हाँ तुमसे प्यार करके, चैन ले लिया तुमने दिल को हार करके। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वाला, हियर ऑन यू आर, जो हमने पेश किया है। और इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जाएंगे, ये आखिरी गीत पेश करूंगा, उसके बाद में 11 बजे के ब्रेक होंगे। और 11 बजे के ब्रेक के बाद सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे, क्योंकि आपका और मेरा साथ रहेंगे हमेशा की तरह टिल मिडनाइट। और भी खूबसूरत नगमाएं हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, जो आपके नाम करनी है। विल ये दातोक, एक कान नोग एन ऑफ ट्वे एपर्स गब्रुइक, तो आप ऐप करें 020-363-0808। लेकिन आपको मालूम रहे, अगर आप ऐप करेंगे dan sta je helemaal onderaan en het zijn allemaal souls. Ja, dat ik meer geil, hè? Ah, soul. Ik aangere giet is Ghantika, mijn pjaris en alle oor, wo giet hem pjesh keringe. Alphen aan de Rijn, ze jo, heb aie hè, Kamla. Dankjewel, Kamla, apke, apke lie. Geniet van je weekend. Geniet van je waar. Geniet van Saturday Night Fever. किशोर कुमार का एक नगमा जो मिलकर गाएंगे, जेदन और जयदी। और ये नगमा आपके नाम करता हूं कमला, डंकीवेल नुखमाल्स आपके ऐप के लिए। मेरे प्यारे सुनोल, इस गीत के बाद ब्रेक, ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर हम जरूर से जरूर फिर मिलेंगे।

क्यों तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, और रोगे तुम तो ना रोएगी ये दुनिया। कुमार सानू की आवाज एंड इट वॉज मेड द इंडियन टेम्पटेशंस। मेरे प्यारे सुनो लोग, 11:10 गुजर चुके हैं। 5 घंटे का ये प्रोग्राम, लोकल प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर हियर ऑन यूआर का आखिरी घंटे में हम आन पड़े हैं। En ik zeg nog steeds, de avond is heel jong. En het is nog heel erg gezellig. Oh, weekend het om erop, ja, die zijn hallo. Ja, dan moet je er parpoor van genieten. Or, apki baar, jo geet hem chalenge. Voor Danny, Lachman Singh en Meena ji. डैनी लक्ष्मण सिंह और मीना जी के लिए गीत हम पेश करेंगे सागर मालिक का गाया हुआ अतिसला और मानसी सो। अगर हो सके तो दोनों मिलकर इस पर आप दोनों नाचे प्यार से, इसे सुने और प्यार से इस पर आप दोनों नाचे। डंकी वेल देन फॉर ये एपियर, एंजॉय योर वीकेंड, मैच दीर बार एंड फाइन नचा फस्टम तो बेंट।

सागर मालिक मेरे प्यारे सुनने वालों, सागर मालिक की आवाज जिया धड़क धड़क जाए। वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे होलैंड कन्नड़ में सागर मालिक जी। एन हम आपको ले चलेंगे रोम 1992-93 यार 80 हाड़ वन फंटास्टिक सिंगर भीम और शंकुतला भी गा रहे थे शकुंतला। तो भीम और शंकुतला के इन दोनों का एक नगमा पेश करने जा रहा हूं। इसे हम नाम करेंगे रतनाम में जो रहते हैं प्रिंसेस राज के नाम। डंकीवेल धन्यवाद ऐप करने के लिए, चून करने के लिए, और एंजॉय सैतने राजी। और ये गीत जो भीम और शकुंतला मिलकर गाएंगे आपके नाम प्रिंसेस राज रतनाम।

खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनालो भीम और शकुंतला जी की आवाजें एंड भीम वसन टॉप सिंगर, पता नहीं आजकल गाते हैं या नहीं, लेकिन डे यार 80 बखिन यार 90 भीम जी फंतासिस। प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं जॉन और मुस्लिम, तो इन दोनों के नाम गीत हम पेश करेंगे अब की बार प्रोग्राम में। थैंक यू लिवेल फॉर टफ स्टेम शेखर कुमार की आवाज में ये नगमा फॉर मुस्लिम एंड जॉन।

तुम मुझसे एक बार कहो तुमको मुझसे प्यार हो गया। शिखर कुमार की आवाज में गीत आप सभी ने सुने हैं। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों। घर की तरफ मैं एक बार एक झलक देखूं तो 3 मिनट तो गुजर चुके हैं सरी 11 बजने में। 3 मिनट तो ओवर क्लॉक वन हाफ 12 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे। हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर, जिसे हम नाम करेंगे आमस्टरडम में जो रहते हैं सत्या जी। डंकी वेल आपके अब के लिए सत्या जी के नाम खूबसूरत गीत पेश करूंगा और भरपूर आप एंजॉय करें। एंड डंकी वेल फॉर टफ स्टेमर एंड एपर।

या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, सुन रहा है तू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 8 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, सरे 11 बजकर, और अगले गीत की ओर रंजय प्रहलाद सिंह की आवाज में गीत हम पेश करेंगे, और ये गीत हम नाम करेंगे आरएनएम में जो रहते हैं शारदा, शारदा एट आरएनएम, आपके नाम गीत पेश करता हूँ। एंजॉय डंकीवेल फॉर टफ्टम हियर ऑफ यू आर, और खास करके सैटरडे नाइट फीवर को सुनने के लिए रंजय की आवाज में गीत पेश है।

विजय की आवाज मेरे प्यारे सुनवालों, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है बिन तेरे, कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज पेगी सुप्रसाद और विवा से तो कल देर इव स्पीकर गया तुम्स चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर ना चुराना ओ सनम।

चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम। That was natural, गया तुंस और पेगी सुपर साथ। और एक और त्रिनी पॉप नगमा पेश करेंगे, कविता राम किसुम, और वही नगमा जो काफी मशहूर है आजकल, सभी ने गाए हैं। कविता जी ने सोचा मैं भी गा लूं, तो पेश करता हूं।

क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, सैयारा कविता राम किसुन का वर्जन आप तक हमने जो पेश किया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त आ गया है कि आखिरी गीत मैं पेश करूं और आखिरी गीत के बाद हम यहां से रुखसत होंगे। आप देख रहे हैं 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे या शायद 24 घंटे भी आसत लोई के से खसलखिस वक्त यूं ही और इतनी रफ्तार से निकल जाते हैं। जी तो यही चाहता है कि सवेरे तक आपके लिए मैं गीत पेश करूं, लेकिन क्या करूं, और भी काम है और भी मजबूरियां हैं। तो आज के लिए उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से प्रोग्राम हमने सजाए हैं आप सभी ने भरपूर भी पसंद की है। आपके लिए प्रोग्राम फिर हम सजाएंगे अगले हफ्ते बुधवार की रात्रि को 13 तारीख 13 मैं को पेश करूंगा प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, और 14 तारीख को पेश करेंगे दिल की आवाज, और ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर 16 मई। हाँ जी, 16 तारीख मैं को फिर हम पेश करेंगे हियर ऑन यूआर। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू वेल, शुक्रिया। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर आई लव यू ऑल।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल

0: सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।
1: मुजस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो,